ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सहे ना परसे, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रघाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड़ पर आला, आले पीतर ताती, जाग तरह सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे न अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस

प्रस्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

क्या भाव है, मन प्यास बौद्ध दर्शावे रखाओ, सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुच आवे कृपा करज पुरख विधाते, सो सदा सदा तु त्यावे, कवन योग कवन ज्ञान त्याना, कवन गुणी रीझावे, सोई जान सोई निज भगता, जिस ऊपर रंग लावे, साई मत साई बुद्ध स्यानप, जित निमक न प्राप सरावे, संत संग लग क्यों सुख पायो, हर गुण सदगी गावे, देखो अचरज महा मंगल रूप, किस आन नहीं दिष्टावे, कहो नानक मोर्चा गुर लायो।

सदगुर ज्ञान मज्जन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस भय कुबजा।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद

मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रापाई मैं सदगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी ताबे को पुरख मुरारे संत जिना की रेन मन पाई मेरे हर जन घर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सा फिरया फिर अंतर घर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पावन सूत सब नीका करया सदगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवलादास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इसे नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एको नारायण, ते पवन एका ज्योति, जे वा डंडी ओकर शाबा, तुलो नाम अजाती, एको हाट साव सबना सिर, वणजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रहे ने प्राती, शब्द विसाए परम चुकाए, सदा सेक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बार कर एको, नानक पया उदासी, राग मारू महला पहला, कर पंजवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, अहिंस जागे नींद न सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे, प्रेम के कान लगे तन पीतर, वैद के जाने कारी जियो, जिसनु साचा सिवती लाए, गुरमुख विरले किसे बुझाए, अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का वापारी जियो रघाव, फिर से ती तन प्रेम हरचाए, गुर के शब्द तथा चित लाए, सहसे ती तन खरी सोहेली, कृष्णा तिखा निवारी जियो, सहसा तोड़े परम चुकाए, फै जे सिवती तनक चढ़ाए, गुर के शब्द मरे मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो, होमे जलिया मनो विसारे, जंपुर वजे खड़ग करारे, आपके कहे नाम ना मिलई, तू सो जीड़े पारी जियो, माया ममता पवे ख्याली, जंपुर फासेगा जमजाली, हेद के बंधन तोड़ना सांक है, ता जम करे खुवारी जियो, ना हों करता ना मैं किया, अमृत नाम सदगुर दिया, जिस तू दे

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाव बुरा पला किस आपस ते जाने एई सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जोत पाना सो सतकर मानया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिला बाग होए। गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओना विच आप वरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनुरहों कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर ना।

पूरे नाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सहवास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन रिजास हर गुर विते आप रखे हर मिले गुर सहवास सागर भगत पंडार हर पूरे सदगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर प्रगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमुख हर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईगे अकथ कहानी संत जिना मिल पाया तुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रो तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत सरदा उपजे गुर सबदी हर चाख साब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता दावरेन शरणाए। कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाओ सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौ है रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुणहर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेवो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा, सो हर क नहीं जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, जिन्ना न खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, समता का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोहे जीवन पदवी पाई, जीत्या वो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई। रघाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पामन पतत किए खिन पीतर, महिमा कथन ना जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद चरण उठाई, नानक जग गावे ठाकुर का, रैन दिन सिलेवलाई। मारू महला पंजवा, जो समर्थ सर्वगुण नायक, तिसको कहु न गाव सरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओवा को फिर ताव सरे। अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग रंग रच रसिया,

अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरे पयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पद पाई कहो नानक त्रैगुण प्रमशूटा जो प्रापय सहाई। मारू महला पंजवां अंतर जामी सब जाने इस ते कहां दुलारे हो

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो सच।

निकुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थ जोड़ न कत हो जाए, हो नान सुख पाया तृप्त रहे आगाए। मारू महल्ला पंजवा फूटो आंडा परम का, मने पयो परगास, काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास। आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रघाव। जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगार, जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर की ने तरमा। सच थान सच बैठ का सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महल्ला पंजवा वेद पुकारे मुगते पंडित, का मामन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती, हृदय कल्पन गाठा, होए उदासी

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बोबद जोनी फिरत अनेता जय जानू तै रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई प्रा बिसरत नरक मह पाया।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस घी निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रभ करण कारण एक रखाओ चेत मन में तज सियाणप जोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवां पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखियो मा।

बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्हीं नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे।

नगरी नायक नव तनो बालक लील अनूप नार ना पुरखना पंखनु साचो चदर स्वरूप जोत पावे सोथिए तू दीपक तू धूप गीत साध चाखे सुने बाद सात नरोक सच पावे साचो चवे छूटे सोग वियोग नानक नाम ना विसरै।

पूरे सावास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लए गुर को बर जाइए लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी साचे बैसन उठना सच भोजन पाखिया चित सचे वितो सचा साचा रहचाखिया साचे कार साचे रखे गुर बचन सुपाखिया मनमुख को आलस घणो फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी अनहत लाला बिदया प्रभगेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी जिन्नी नाम सारिया

तुन्ने अलख अपार निरालम, तुन्ने ताड़ी लाए दा, सुनो तरत अकाश पाए, विरथम्मा राखे सच कल पाए, ते पवन साज मेखली माया, आप पायख पाए दा, सुनो काणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, ओत पुचलत किया सिर करत है, विस्माद शब्द देखाए दा, सुनो रात दिन सद किए, ओपत खपत सुखा दुख दीए, सुख दुखी ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाए दा, सां वेद रुग जुज अथर बण, ब्रह्मे मुख माया खे त्रै गुण, ताकि कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बुलाए दा, सुनो सबत पताल उपाए, सुनो पवन रखे लिव लाए, आपे कारण किया अपरंपर, सब तेरो किया कमाए दा, राज ताम सड़कल तेरी छाया, जन्म मरण हो में दुख पाया, जिसनु कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराए दा, सुनो उपजे तस अवतारा, सृष्टि उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, तब लिखिया कर्म कमाए दा, गुरमुख समझे रोग न होई, ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, तो मुक्त पया पद पाए दा, पंच तत् सुनो परगस, देह संजोगी कर्म अभ्यास, बुरा भला दो मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाए दा, उत्तम सदगुर पुरख निराले, शब्द ते हर समत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाए दा, इस मन माया को निहोक नेरा, कोई बुझो ज्ञानी करो रंबेरा, आसा मनसा हो में सहसा, न लोभी कूड़ कमाए दा, सगुर ते पाए विचारा, तुन समाज सचे करबार, नानक निर्मल ना शब्द तोन, सच रामे नाम समाए दा, मारू महला पहला, जय देखा ते दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुत समाई, रहो निराल मराया, जत की छाया, जिस बाप ना माया, ना ते पैण ना प्राव कमाया, ना तिस ओपत खपत कुल जाती, ओ अजरावर मन पाया, तू अकाल पुरख ना ही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सत संतोख सबजत शीतल, तैज पाए लिवलाया, त्रैवरता चौथे करवास, काल काल किए एक रस, निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनघा शब्द दिखाया, उत्तम जन संत पले घर प्यारे, हरस माते पार उतारे, नान करेण संजन संगत, हर गुर प्रसादी पाया, तू अंतरजामी जी सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे, अमृत नाम कृपा कर दीजे, गुर ज्ञान रतन दी पाया, पंच तत् मिल इहो तन किया, आत्मरा पाए सुखतिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, नाथ पूग प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन खड़कड़ जानिया, अमृत हजराता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द साल रसन रस रसना, बेण साल बजाया, बेण साल बजावे सोई, जाकी तिरपमन सोजी होई, नानक बूझो एवद गुरमत, हर राम नाम निवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरह संगत कुलता रहे, तेन सबर जन्म जग आया, घर दर मंदर जाने सोई, ये पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महलनी प्रसाचा, सच साचा ततर चाया, चदर दस हाट दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बख चाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले घर तन पाया, तख्त भय तख्ते की लायक, पंच सुमाए गुरमत पायक,

जाए। अन दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है। सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आ मिलया सबना का दाता। होमे मार तृष्णा अग्न निवारी, शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझे, गुरमुख होवे ताया की सूझे।

आपे नदर करे मन वसिया मेरे प्राव्यों फरमाई हे सतगुर सेवै से जन साचे मानमुख सेव ना जानन काचे आपे करता कर कर वेखै ज्यों पावे त्यों लाई हे जुग जुग साचा एको दाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से बिछड़े नाही नदरी सहज मिलाई हे हौमे माया मैल कमाया मर मर जम्मे दूजा पाया।

कर्म होवे गुर भगत दरड़ाए, विन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, जो फावे तिवे चलाए दा। सिमरत सास अंत न जाने, मूर्ख अंधा तत न पछाणे, आपे करे कराए करता, आपे परम भुलाए दा। सब कुछ आपे आप कराए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे थाप थापे वेखे, गुरमुख आप बुझाए दा। सच्चा साहेब गैर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाए दा। आप निरालम होर तंदे लोई, गुर प्रसादी बूझे कोई, नानक नाम से कटे अंतर, गुरमती मेल मिलाए दा। मारू महला तीजा, जो शती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाणे, तू आपे कीमत पाए दा। ओ अंकार सब श्रेष्ठ उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेग करे सब साचा, आपे पन कढ़ाए दा। बारीगर एक बारी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे से उचित लाए दा। बाजे बाजे तुन आकारा, आ बजाए बजामन हारा, घड़ घड़ पौन वह एक रंगी, मिल पवने सब बजाए दा। करता करे सुनेचो होवे, गुर के सब देखो में खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याए दा। गुर सेवे जेवड होर लाहा नाही, नाम मन वसे नामो सालाही, नामो नाम सदा सुखदाता, नामो लाहा पाए दा। बिन नावे सब दुख संसारा, बहु कर्म कुमावे वदे विकारा, नाम न सेवे क्यों सो पाइये, बिन नावे दुख पाए दा। आप करे तय आप कराए, गुर प्रसादी किसे बुझाए, गुरमुख होवे से बंधन तोड़े, मुक्ति कह कर पाए दा। गंत गणे सो जले संसारा, सहसा मूल ना चुके विकारा, गुरमुख होवे सो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा। जे सज दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सारा हे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा। जब तब संजम नाम प्यारा, किलवे काटे काटन हारा, हर के नाम तां मनसी तल होआ, सहजे सहज समाए दा। अंतर लो मन मैले मन लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वापारा, कूड़ बोल दुख पाए दा। निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर के पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा। आप सरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख होवे सो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा। अनेक जतन करे इंद्री वस न होई, काम क्रोध जले सब कोई, सदगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मने सुमाए दा। मेरा तेरा तुदे आपे किया, सब तेरे जंत तेरे सब जिया, नानक ना सुमार सदा तू, गुरमती मन वसाए दा। मारू महला तीजा, हर जीव दाता अगम अथाह, उस दिल ना तुमाए वे परवाह, इसनू अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाए दा। जो करे सुनेचो होई, जिस बन दाता अवर ना कोई, जिसनू नाम दान करे सो पाए, गुर सबदी मेल आए दा। चौदे पवन तेरे खट नाले, सब गुर दिखाए अंतर नाले, नावे का वापारी होवे, गुर सबदी को पाए दा। सतगुर सेवे सहज आनंदा, फिर दे आए बुठे गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराए दा। सतगुर ते विछड़े तिनी दुख पाया, अंदर मारगे दुख सबाया, मथे काले महल ना पावे, दुख ही विच दुख पाए दा। सतगुर सेवे से बड़ भागी, सहज पाए सच्ची लिव लागी, सचो सच कमावे सदगी, सच्चे मेल मलाए दा। जिसनु सच्चा दे सो पाए, अंतर साच परम चुकाए, सच सच्चे का आपे दाता, जे देवे सो सच पाए दा। आपे करता सवना का सोई, जिसनु आप बुझाए बूझे कोई, आपे बगसे दे वड्याई,
आपे मेल मलाएंदा। होमे करद्या जन्म गवाया, आगे मोह न चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे, ज्यों तिलखाणी पीड़ाएंदा। पूरे पा गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल नेड़ न आवे, मैल सचे सुख पाएंदा। तिन सुख पाया जो तुद पाए, पूरे पा गुर सेवा लाए, तेरे हाथ के सब वडियाई, जे देवे सो पाएंदा। अंदर प्रगास गुरु ते पाए, नाम पदार्थ मन वसाए, ज्ञान रतन सदा कट चानन, अज्ञान अंधेर गवाएंदा। अज्ञानी अंधे दूजे लागे, बिन पानी डुब मुए अपागे, चलदियां कर दर अंदर न आवे, जमदर बादा दुख पाएंदा। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, ज्ञानी त्यानी पूछो कोई, सतगुर सेवे जिमिले वडियाई, दर सच्चे सोभा पाएंदा। सतगुर नू सेवे तस आप मिलाए, ममता काड़ सच लिवलाए, सदा सच वणजे वापारी, नामो लाहा पाएंदा। आपे करे कराए करता, शब्द मरे सोई जन मुक्ता, नानक नाम से मन अंतर, नामो नाम त्याएंदा। मारू महला तीजा, जो तू करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाना मन ने सो सुख पाए, पाने वे सुख पाएंदा। गुरमुख तेरा पाना पावे, सहजे ही सुख सच कमावे, पाने नू लोचे बहुत तेरी, अपना पाना आ मनाएंदा। तेरा पाना मने तू मिले तुद आए, जिस पाना पावे तो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएंदा। जत पावे तां गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, तुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जिसनू पाना दे तुस पाएंदा। मन अंध करे चितराई, पाणा ना मन ने बहुत दुख पाई, परमे पूला आवे जाए, तर मैल न कबहू पाएंदा। सतगुर मिले दे वडियाई, सतगुर की सेवा तुर फुरमाई, सतगुर सेवे ता नाम पाए, नामे ही सुख पाएंदा। सब नावो उपजे नावो शीजे, गुर कृपा ते मंत्र पीजे, रसना नाम त्याए रस पीजे, रसी ते रस पाएंदा। मैल अंदर मैल को पाए, गुर के शब्द सच चित लाए, जिसनु सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएंदा। नाम सार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है पुष्टि, नरके वासा पाएंदा। नाम रते ते निर्मल देह, निर्मल हंसा सदा सुख नेह, नाम सलाहे सदा सुख पाया, ने करवासा पाएंदा। सब को वंज करे वापारा, विण नावे सब तोटा संसारा, नांगो आया नांगो जासी, विण नावे दुख पाएंदा। जिसनु नाम दे सो पाए, गुर के शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम सिया कट अंतर, नामो नाम त्याएंदा। नावे नू लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाओ पाया से वड़पागी, गुर के शब्द मिलाएंदा। काया कोड़ अत अपारा, तिस जबै प्रव करे विचारा, सच्चा न्याओ सचो वापारा, निचल वासा पाएंदा। अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, एत साथ निर्ग सारा गे सच्चे, हर सच्चा मन वसाएंदा। मेरे करते एक बणत बनाई, इस देही विच सबद पाई, नानक नावण जे रंग राते, गुरमुख को नाम पाएंदा। मारू महला तीजा, काया कंचन शब्द विचारा, तिथे हर अवस्थे जिदा अंत न पारा वारा, आन दिन हर सेव हो सच्ची बाणी, हर चेते तिन बलहारे जाओ, गुर कै सब तिन मेल मिलाओ, तिन की तूर लाई मुख मस्तक, सत संगत भय गुण गाएंदा। हर के गुण गावा ते हर प्रभावा, अंतर हर नाम शब्द सुहाव, गुरबाणी चौकुंडी सुनिए, सचे नाम समाएंदा। सोजन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाएंदा। वड़े भाग यो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्दे सब अंध अंधेरा,
ਗੁਰਮ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਦਰ, ਇਕ ਕਿਤ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੇ, ਪਾਗ ਖਿਸੇ ਪਛਤਾਏ ਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾ, ਤਿਸ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਤਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਸਚੋ ਸਦ ਵੇਖੇ ਸਦ ਥਾਈ, ਸਸੁਣ ਮਨ ਨਮਸਾਏ ਦਾ, ਹੋਮੇ ਗੰਢ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਹਰ ਜੂ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੋ ਉਰ ਤਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ, ਸੋ ਚੇਤੇ ਜਿਸ ਆਪ ਚੇਤਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਝੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਮਾਏ ਦਾ, ਜੇਨ ਮਨ ਵਿਚ ਵਥ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਆਪ ਛਾਣੇ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਗਏ ਸਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਅਨਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਦਾ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਸੇਵੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਫੁੱਲੇ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਹਰ ਜੂ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਦਾ, ਤਾਇਆ ਕੋਟ ਪੱਕੇ ਖਟਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਵੇ ਵਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਦਾ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਕੋ ਪਾਏ ਦਾ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਪਰਸੂਤ ਜਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਵਰੇ ਮਹਾਵਾਰ ਥਿੱਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਦਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਉਰਤਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏ ਦਾ, ਵੇਦ ਪੜੇ ਅੰਦਨਵਾਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬੱਧਾ ਜਮਕਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤ੍ਰਿਵਦ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਏ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਰ ਰਾਤੇ ਸੇ ਹੁਣ ਰਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਪਰਮਨ ਪਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲੱਗਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲ ਮਨ ਲਾਏ ਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਪਏ ਪਾਏ ਰੰਗਾਏ, ਇਹ ਤਰੰਗ ਸਾਚੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਉਹ ਇਹੋ ਰੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਚੜਾਏ ਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ, ਦਰਗੇ ਕਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज

मेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीस, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, इस बिन दूजा अवर ना दीस, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खत्म हमारा, सिमर ना पुन्नी सा।

तर्हि केश गोवर्धनधारी मुरली मनोहर हार रंगा मोहन माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असुर संहारे जगजीवन अविनाशी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाज अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया। नानक दास सदा सरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकि कीमत कहण न जाई, जगत ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख विधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दूग सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए। सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यामना। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए, तौ गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाईए, ये सतगुर माए सुमाए। मोल अमोल ना पाईए, वणजना लीजे हाट। नानक पूरा तो

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शो हर नाम समाने आपे भगती लाए होन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे ओथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद्ध जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सा संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भरी किरके गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया अनस ठाक रखाया हर पी सदा तृप्त भये तृप्त न

जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फेर जन्म बिनासा गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरासा सिमरत सास्त सोध देख

मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बेन किसे न लत्ती भुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाए।

लोयनी कन्नी सुरत समाए जीब रसायन चूनड़ी रती लाल लवाए अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही न जाए पौड़ी एस जुग में नामन दान है।

मानमुखो जगत निरतन है, माया नू बिरलाए, अनदिन फिरदा सदा रहे, भुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई, नै सुख वसे मन आए, सदा चिंत चितवदा रहे, सहसा कदे न जाए, नानक वेण सतगुर मत पवी, सतगुर नू मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुखमय रहे, सच्चे महे सुमाए महला तीजा, जेन पाई मेदनी सोई सार करे, एक को सिमरो पाए रहो, तिस बिन अबर ना कोए, खाना शब्द चंगियाइया जिन खादे सदा तृप्त होए, पहनण शब्द सुनाए है, सदा सदा ओ उजला मेरा कदे ना होए, सहजे सतन खटिया थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द सीगार है, जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है, जिसनु आप वखा ले सोए पौड़ी, अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे, हर घर नाम ते आई है, होमे अज्ञान गवापे, अंदर अमृत पारपूर है, चाख्या साध जापे, जिन चाख्या से निरपौ पे, से हर अस्त्रापे, हर कृपा तार पी आया, फिर काल नाम आपे, श्लोक महला तीजा, लोक अगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजे कोए, गुण का गाक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पाईन जिसनु नदर करे महला तीजा, गुण अवगुण समान है जे आपकी ते करतार, नानक हुक्म मन्ने है सुख पाई है, गुर शब्दी विचार पौड़ी, अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराओ, खरे परख खजाने पाईन खोटिया ना ही थाओ, सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ, अमृत का रस आया मन वस्या नाओ।

न जान ही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यो क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर भौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस

कारण समर्थ है ओपत सब परले, कारण कारण समर्थ है घाट खड़ सब बोले, रिजक समाखे सब से क्या मानस डोले, गहर गंभीर अथाओ तू गुण ज्ञान अमोले, सोई कम कमावना किया तुर मोले, तुद हो

ना ब्यास कहत है सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे रम छूटो नाए ता बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार। सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मे राम।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर हर ना जब सरसना, अवर सब शाढ़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू पल, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्मरामा, बाबी का प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले, अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी जा प्रा पाणी,

सुजान बिधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रापाने ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख पग नानक सातन ना प्यारी अब भगती पिर अग ओह तुखार पड़े वाण त्रैण रस सुख आपत की नाही मन तन वसै मुखे मन तन रब रहया जग जीवन गुर सबदी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उदपुज कड़कड़ जोत समाणी दर्शन देव दया।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हों सतगुर कै बलिहारिये सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध

आया गुरवाग सदगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया ज्योति ज्योत मिल जो तस्माणी हर कृपा कर धरणी तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू कट कट पूर रहया तू अलख अपेव अगम गुर सदगुर बचन लहया तन तन तेजन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे बवेक बुद्ध विचार गुरमुख।

पंथ चले गोर, सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत, गुर सतगुर पुरब होआ, खबर पई संसार, आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक, सुर नर मुनजन सब आया, जिन परसया गोर सतगुरु पूरा, तिन के किलबिख नास गवाया, जोगी दिगंबर सन्यासी,

संग स्वामी हार गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक कहो हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवां हर के दर्शन को मन चाओ कर कृपा सत संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे

पंजवां हर बेन जन्म अकार सजात तद गोपाल आन रंग राजत मिथ्या पैरत खात रहाव तन जोबन संपय सुख भुगवे संगन निभत मात मृत्युना देखर त्यो बावर द्रुम छाया रंग रात मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गय लियो दास नानक को प्रभ जी हुए सहात केदारा मोहल्ला पंजवां हर बिन कोई न चालत साथ दीना नाथ करना परस्वामी अनाथा के नाथ रखाओ सुध संपत दिखिया रस भोगवत नै निभत जम के पाथ नाम निधान गाओ गुण गोविंद उधर सागर के खात सरन समरथ अकथ अगोचर

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुमरत।

ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल, छूट गई संसारी रगाओ, ताते लाए तौ सच लागे, साचे के व्योहारी, साची बस्त के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी, आपे रतन जवाहर मान, आपे गए पासारी, आपे दहेदस आ

पाया। जैसे खूंद खुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

रूप रंग रेस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो पानी हर जाप जन्म गयो साच शब्द बेन कहो ना छूड़स बिरता जन्म पयो रखाओ तन में काम क्रोध को ममता कठिन पीर अद फारी गुरमुख राम जपो रस रसना एन बेद तार तू तारी बहरे करण अकल पई होची साबद सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंध न सूझया रहे उदास आस निरासा सहज ध्यान बैरागी परमत नानक गुरमुख छूड़स राम नाम लेव लागी।

तहत नानक यो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गरीब पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे नामूसे कोए रहाओ। तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे। सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत पछाणे।

होए, निकर वस्ते सहज सुपाय, गुरमुख नाम से मने आए, आपे विखे विखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन से जन प्रवान।

अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम मुसाए, कार दर महल सदगुरु दिखाया, रंग सिवर लिया माने, जो उस कहे सो भला कर माने, नानक नाम खाने, भैरों महला तीजा, मसा मने समाए लय।

कुजलय उबार खिनमय भयान रूप निक्षा थम उपाड़ अरणागस नही बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

बिन सतगुर कैसे पार परया, रहाओ बिन जेवा कहां को भगता, बिन श्रवना कहां को सुनता, बिन नेत्रा कहां को पेख, ना बिना नर कही ना लेख, बिन विद्या कहां कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे।

अंदर रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कड़ लाया। टूटे बंधन सा संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरो महला पंजवा, ईत आवे ता महा आनंद। ईत आवे ता सब दुख पंज, ईत आवे ता सरदा पूरी। ईत आवे ता कभे न चूरी, अंतर राम राय।

रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मन गहे, अंग भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण गारी, खिन में ऊने सुबर भरिया, खिन में सूके कीने हरिया, खिन में निथावे को दीनो थान, खिन में निमाने को दीनो मान, सब में एक रहा पर पूरा, सो जापे जिस सतगुर पूरा, हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार, भैरों महला पंजवां, मुए दुहागन आप सिगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद, कर कृपा मुए पेटे कंत रगाओ, तब्द बुझी पूर्ण सब्यासा, मिटे अंधेर भय परगासा, अनघ शब्द अज

अंतरजामी सचा सोए, तेरी टेक तेरा मनतान, ईगा ऊहा तू दीबान, तेरी टेक तेरा परवासा, सगल त्याव है प्रभु गुणतासा, जब जब अंध करे तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणतासा, भैरो महला पंजवां, परस में छोड़ी प्राई निंदा, उतर गई सा मन की चिंदा, लो मोसव की

सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो सा पागे वड़पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तरम हो करता, बंधन काटनहार मन वसै, तौ सो पावे निज कर बसै, सब जाजक प्राजे मनगार, गुण निदान बेंत अपार, जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर घर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कौ नानक तुमरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, तार कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औषध मन पीतर सारे, गुर पेड़त मन पया आनंद, सर्वन दान नाम भगवंत, जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत हूंद कवन विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा, तब ते ऊंचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जे सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बसे मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए, रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा तन साची वड्याई।

चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह हर सिमरत दायत जो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जो ना रुद्ध हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माई अकेला जात जात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गद होए हर का नाम जपिगे सा।

दुविधा रोग सु अधिक वडेरा माया काम होताज भया। गुरमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया। नानक हर जन अन

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अरहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब की स्या

असंख कोट अन पूजा करी। एक न पूस नामे हरी, परमे नाम दियो इहो करना। अंत रूप तेरे नारायण, पर थान पर दारा पर हरी। ताके निट बसे नर हरी, जो

तैसे ओए नरा परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे धुए आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत परी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा

ज्यों जो नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा फिरे भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी

तभुन तूड़स रहया समाये। नामे चित लाया सच नाय, जैसी प्रीत बार्ग अरमाता, ऐसा हर चित्ती मन राता, परमे नाम देव

राज गुरमत उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रखाओ गुर चरण सरे वे गुर सिख तोर गुर सेव तय तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव न पाई।

आग गुरमेल मिलावे करे दात गुरसुख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुष दे कौ नानक पावे विरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावे सेवक सेवा करे जीवित मरे

संत हंडोल तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बेप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला आराम नाम जा बेड़ा बंद हो।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

भगत वछर हर वस्ते मन आए, गुर कृपा ते सहज सुभाए, भगत करे विचों आप खोए, तद की साथ मिलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रद्वार, गुर के हित साचे प्रेम प्यार, अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए, गुर सब जी विचो हो मैं खोए, हर जीव आप से मन आए, सदा शांत सुख सहज समाए, साच रते

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो

प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण जोत त्यों कड़कड़ रमैया ओत पोत एक कोहा रविया सर्ब थाए गुरसबदी मिल गए मेरी माए हराओ कड़कड़ अंतर

सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हारस पुंज रहाओ। सत संगत साध दया कर मिल हो, शरणागत साधु पंज। हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज। हर उस्त तारो अंतर स्वामी, सत संगत मिल बुद्ध लाइ। हर नामे हम प्रीत लगानी, हम हर विटों कुम वाइ। जन के पूर मनोरथ हर प्रभ, हर नाम देवो हर लाइ। जन नानक मन तन अंध पया है, गुर मंत्र दियो हर पाइ। बसंत महला पंजवा कर पहला, दो तुके एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार।

प्रभु देहे साल संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्र तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट काट काट रया सुमाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खै, जाके भगत को नाही पै, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो सुमाय, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवा, मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत त्यों

कशु न होई गए पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सोहेली जे लोड़ है तदा सुख पाई साधु।

दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल। अपने दास को नदर निहाल कार कृपा मुझे देहो दान। जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा राम रंग सब गए पाप। राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर। हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग। संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश। जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान। गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग। मन पाप करत तू सदा संग।

जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रवदास रखे कर जतन आप, अखंड पूर्ण या को प्रताप, गुण गोविंद ने दर्शन गाए, नारक जीवे हर चरण ते आए, बसंत मोहल्ला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रव करी माया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जब जीवे नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर चित आवे, बिन सदगुर दीसे बिल लांती, सागत फिर आवे जावे रघाव, से तनवंत जिन हर प्रवरास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपय पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो लिवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल

तुम रो प्रस भागे हर चेत मन मेरे अरहाओ सगन बाज कूले एक रह सूक कठूले बसंत रुत आई प्रफूलता रहे अब करू आयो रे एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही

एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विशाए, इन विद पासा ढल हो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल न लागे पीर रगाओ, कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल घर प्यारी, उठ स्नान करो प्रभाते, सोए घर आराधे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सदगुर, सुख सहज सेती कर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नान गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया, बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जान है, और ना दूजा जान है, जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुदे पछाण, तेरिया भगता कौ बलिहारा, थान सो आवसदा प्रो तेरा, रंग तेरे आपारा, रहाओ तेरी सेवा तुते होवे, और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनु तू रंग धरता, तू वरदाता तू वरदाना, और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा, हाँ क्या जाना तेरी पूजा, तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे, विघम तेरा है पाना, कहो नानक तय पया द्वारे, रख ले वो मुगद अजाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहं मनी, पिता पार ब्रह्म प्रवधनी, मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ, ओपत परलो प्रवते होवे, ए बिचारी हरजनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, काल में सुहिए से गनी, आवर उपाओ न को सूझे, नानक तरिगे गुर बचनी, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, राग संत हिंडोल महला नावा, साधु इव तन मिथिया जानो, या पीतर जो राम बस्त है, साचो ताए पछानो, रघाओ इव जग है संपत सुप।

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ सब सुपने कह यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्तनीत निज बासर पजताहे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रखाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़ बंधन बाध्यो शीश मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंद न सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के भाणे आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वरते हुक्म सुमाए, दू सू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे।

तैलीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद।

दो सुख बांधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खाहे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिर मैं गवार माया मुए मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हाँ।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहे हो।

पूर्ण परम जोत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझ स शब्द विचारे मानमुखहीन होशी।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मेल सतसंगत परम पद पाया आत्म राम रहया पर पूर रघाओ सतगुर संत मिले संत पाई है।

जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रखाओ, जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे, अनदन भगत करे गुर आगे गुर के शब्द सवारे, हिरदे नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे, गुर प्रसाद अमृत रस जीनिया कोई पावे मोह द्वारे, सदगुर पुरख अचल अचला मत जे दृढ़ता नाम आधारे, तिस आगे जीवो देवो अपना हौ सदगुर कै बलिहारे, मनमुख प्रम दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारे, सदगुर दाता नदर न आवे ना उरवार न पारे, सर्वे घट घट रविया स्वामी सर्व कला कल तारे, नानक दासन दास कहत है कर कृपा लिहो उबारे, सारग मोहल्ला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए, जुग जुग करे सो सत्कार मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाए रखाओ, गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए, आन दिन रहस पया मन मानिया ज्योति ज्योत मिलाए, जब गुण गाए तब ही मन तृप्त है सांत वसे मन आए, गुर कृपाल पए ता पाया हर चरणी चित लाए, मत प्रगास पई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया हर सहज समाद लगाए, हिरदे कपट निर कपट कमावे मुखो हर हर सुनाए, अंतर लोभ महा गुबारा तो कूटे दुख खाए, जब सो प्रसन्न पए प्रा मेरे गुरमुख पर चालाए, नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए, सारग मोहल्ला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई मन हर हर कथा सुखानी, रघाओ दीन दयाल हो भोजन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी, संत से नाम मिल रस पाया हर मन तन मीठ लगानी, हर के रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख पुरख मिलिया सुख पाया सौ चूकी आमन जानी, नैनी बिरो देखा प्र स्वामी रसना नाम वखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती हिरदे हर हर पानी, पंच जना गुर वसगत आने तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी हर रामे नाम समानी, सारग मोहल्ला चौथा जप मन आराम।

के निगट निगट हर निगट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जान हर स्यों रल मिले जैसे जान नानक सलले सल मिला आरंग महल्ला चौथा जापमान नर हरे नर हर स्वामी हर

तित गृह वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा तेन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तीन जन के हर मार कढे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, इनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीवै, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक जो जल की। सबल दर्शन कल पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। इस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख

मान संध्या काल करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेपल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़या जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी त्रिया बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रे पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बारे तब ते थान थिरो। जौ दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊट सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो ता को पिन दिष्टो। कहो नानक कुंभ जले मैं डारो अंबे अंब मेलो। सारग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा। लेनो नाम अमृत रस नीको बाबर देश्यो गहे रहा रखाओ। दुर्लभ जन्म किरण काल पायो जातो कौडी बदलहा। काथूरी को गाक आयो लाद्यो कालर बिरख जिवगा। आयो लाभ लभन के ताई ऊंठा गौरी से उर्ज पहा। काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा। सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा। आई मष्ट जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दर सानेगा। आन उपाओ न को सूझे हर दासा सरणी पर रखा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरह। सारग महला पंजवा माई तीर रही

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर तब करता निमख निमख गुण गाही, अरहाओ अनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रगाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई, सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई, आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई, रगाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जननाई, ऊच ते ऊच नाम दो सुमदरसी रविदास ठाकुर बने आई, जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई, सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पय है, यो छेद्यो दुष्ट बेगाना रखाओ। तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक, निमकन कीमत जाना। तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात, तुम पूर रहे भगवाना, पावो दान संत सेवा, हर नानक सब कुरबाना।

मेरो एक पुत सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहां गुन गाई रहाओ, खेल खिलाए लाड लाड।

भोजनम मांगे अकाए सूख कनारे ताब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक तो हुए रवारे कवन बसेरो दा दासन को

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रघाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख है हरी रघाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्व फला दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया, सारग महला पंजवां, सिमरत नाम प्राण गत पावे, मिटे कलेस त्रास सब नस, साध संग हित लावे रहाओ, हर घर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अवमान काम क्रोध निंदा, बाज देव रंग लावे, दामोदर दयाल आराध हो,

रगाओ, जाके सूद परो ए जनता, किस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना, आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की मन।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, ग्रे अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद छांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रमगिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवां, जे वे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की उचरो।

कर मानो साचा ए सुवाओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यों लिवलाओ कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपयाओ सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी ए ओड़ पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ पांच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत।

पंडित तो सूरा सोदाना, साध संग जिन हर घर जप्यो नानक सो परवाना। सारग मोहल्ला पंजवा, हर घर संत जिना की जीवन, दिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रखाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीमन, हर रंग रंग पए मन लाला, राम नाम रस खीवन। जो मीना जल से उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर्क की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन।

प्रव सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। ज्यो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रघाव साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा हृदय वसे पए भंजन ते जाने सगल जगान खेन पल बिसर नहीं मेरे करते तो नानक मांगे दान सार्ग मोहल्ला पंजवा बूठा सर्वथाई में हो अनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ चार कुंट दैदिस जल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत सा संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

और जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग। हर चरण रास नानक पाई लगा प्रसो रंग, सारग महला पनवा माई री पेख रही बिस्माद। अनह तुनी मेरा मन मोयो अचरज ताके स्वाद रहाओ, माद पिता बंद पगे सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुण गोविंद बिन सो सब प्रमाद।

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवां अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैत जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किसी संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जनस पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना

सागर तरिया, हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब, कुदरत कौन बिचारा। मन तन शीतल गुरदर्स देखे, नानक नाम अधारा। सारग महला पंजवा, अष्टपदी कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे परगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मित नाही जाका विस्तार, तो बाता की अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जागे, सोग हरख दोहु मैं नागे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे, अनक महेश बैस ध्यान करे। अनक पुरख

जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई मुक्त पए साह संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पव

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए।

होवे लिंग चिंग ने होवे ऐसी कहिए सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहिए मूर्त पौड़ी सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिद प्राप्त सो लहे गुर शब्दी मिलिया सतगुर के पाणे जो चले हर से तीर लिया जमकाल जोहे न सकई घट चानन बलिया नानक बख्स मिलायन फिर गर्भ ना गलिया श्लोक महला पहला सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान चान इसनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत तोती सुरत चौंका।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन लै शब्द रखे उरतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमे पावे, आपे बगसे मेल लै आपत गवावे, मिलिया कदे ना विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे।

दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर ते टिके, होर ते प्रगट ना होए। अन्ने वस माणक पया, घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई, अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई, ता पारखियां तावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए, ता वथ लहे। नौनद पल्ले पाए, कर होंदे तान। जग भुखा मोआ, बिन सतगुर सोझी ना होए। शब्द शीतल मन तन वसे, तिथे सोग वियोग न कोए। वस्त पराई आप गर्व करे, मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर आवे जाए। महला तीजा, मन अंध पया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले न विछड़े कभू। ये आप मिले करतारे, अंतर शब्द रविया गुर पाया। सगले दुख निवारे, हर सुख दाता सदा सलाही। अंतर रखा उरतारे, मानमुख तिनकी बखीली के करे। जे सच्चे शब्द सवारे, ओना दी आप पद रखसी मेरा प्यारा। शरणागत पै गुरुद्वारे, नानक गुरमुख से सुहेले पए। मुख उजल दरबारे पौड़ी, इस्त्री पुरखे बो प्रीत। मिल मोह वधाया, पुत्र कलत्र नित वेखे। विकसे मोए माया, देश परदे तन चोराए। आण मोए पाया, अंत होए वायर विरोध। को सके ना छिड़ाया, नानक विण नावे त्रिग मोह। जित लग दुख पाया, श्लोक महला तीजा। गुरमुख अमृत नाम है, जित खादे सब भुख जाए। तिसना मूल ना होवई, नाम से मन आए। बिन नावे जे होर खाना, ते त्रोग लगे तन ताए। नानक रस कस शब्द सलाहना, आपे लए मिलाए। महला तीजा, जिया अंदर जियो शब्द है। जित सह मेलावा होए, बिन शब्दे जग अनेर है। शब्दे प्रगट होए,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तिस ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर किसे ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख भुख ले जाए, जन नानक त्रिवते गाए गुण, हर दर्शन दियो सुपाए पौड़ी, गुरपूरे की दात, निध देवे चढ़े सवाइया, तो देवे आप दयाल, ना शपेश पाइया, हृदय कबल प्रगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिरशाई पाइया, नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सदगुर की वड्याई। श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुजत करनी जाए, आव छोड़ सरनाए पवे, मन ले रजाए, गुरमुख जम डांडन लग गई, होमे विच्चों जाए, नानक सेवक सोई आखिए, जे सच रहे लिवलाए, महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप होमे मेरी।

कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात मात पिता बंता सुत संपत अंत न चलत संगात। कहे कबीर आराम पज बौरे जन्म।

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फोन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन

पाए निर्भखई पाए गए सगले थोक आन बस त्यों काजना कछुए सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर तज आन जो चाहत जो पुष्टि तन जोक सूरदास मन प्रभत लीनो दिनो यो परलोक सारंग कबीर जियो एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का माल पिता पाई सुध बनता हित लागो सब फन का अरहाव आगे कौकश तुलखा बंद हो क्या प्रवासा तन का काम विसासा इस पांडे का इतन लगे ठनका सागल धर्म पुन फल पाव हो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आयरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जोग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन।

मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है, कीमत कहन ना जाए। गुर प्रसादी बुझिए सबदे कार कमाए, नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए।

प्राभ नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया, वड्डी वड्याई होई। आन दिन गुण गावे नित साचे, सच समावे सोई। मान रहे गुरमुख हृदय विचार, तय कूड़।

मन की बिद सतगुर ते जाने अणदन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सबका रे लाए सो।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अन दिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए,

निंद न पाए। यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सो पाए। नामहीन बिनसे दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए। बिन भागा नाम न पाया जाए, बहुबद थाका करम कमाए। त्रै गुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैल बिख्या वापार। मार जन्मे फिर होए खुवार, गुरमुख तुरिया गुण उर तार। गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए। चौ जुग शोभा निर्मल।

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ने तरी तब दुर्मत मैल गवाई रघाव जाहर नवी तपे पाघीर त्याणी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चिरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई।

राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदाओत पयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण तिहाई मलार महला पंजवा कानघार बरस सगल जग छाया पए किरपाल प्रीतम प्रा मेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मरने मारे बौर न कतहू ताया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन किते उलास आस मिल।

प्रातन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरव काढ़े है शाट। कल कलेस मिटे दास नानक बौर न जोनी माट। मलार महला पंजवा बहुविद माया मोह हो रानो। कोड़ मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो। रखाओ ए ते उत डोल डोल शरम पायो तान तन होत बिरानो। लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मोए बिख खाई री मार।

दर्श प्यास मेरो मन मोयो, अर पंख लगाए मलीजै रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करीजै। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस

पंजवां पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार सो रंग किया।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तोनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संग रामैया।

मन निर्मल उजियारे विषम विषमे विषम पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार मोहल्ला पंजवा बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो

किरण आकाशी बिकसे सहज सुपाई प्रीतमा प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै बिलब करे बिललाई कानहार कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

सहजे सहज समाई, अपना काज सवारो आपे, सुख दाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिर पाया, तौ नानक तबत बुझाई। मलार महला पहला, जागत जा

मन रे सतगुर सेव समाए, वडे पागुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाहो वाहो कर प्रसाद आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पति आए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम ना लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहा समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम साए साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है

तिन कामणी जिन कंते स्यो मन भंग पौड़ी दोवें तरफा उपाय एक वरत्या वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या।

गोविंद तो सिरजी तुदय गोई लख चौरासी मेदनी तुद ही ते होई। एक राजे खान मलूक कह कहावे कोई एक सास दावे संच तान दूजे पद खोई। एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई विण नावे बाजारिया भी हावल होई। ऊड़न खुट्टे नानका सच करे सो होई। सलोक मोहल्ला तीजा बाबिया गुणवंती मैल पाया अगुणवंती दूर। अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर। ओग पुकार न होवई नदरी नदर निहाल। नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबीहा बेनती करे

बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बख्शलै अंत बेली होए भगवान पौड़ी। आपे जगत उपायक गुण अवगुण करे विचार, त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना तरे प्यार। गुण छोड़ अवगुण कमाम दे दर गए होए खुआर, जुए जन्म तिनिहारिया कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया अहिंस नाम प्यार, जिन्नी पुरखी उरतारिया सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है असी अवगुणियार, जे बगसे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवां, रात ना विहावी सागतां जिन्ना विसरै नाओ, राती दिन से सोहिलिया

0: गाओ।
1: गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

रूप जात जोबन पंजे ठग एनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज ए ना ठगन ठग से जे गुर की पैरी पाहे नानक करमा बारे होर केते मुठे जाहे पौड़ी।

जन्म बिरतिया अंत न पारावार न किन्ही पाया सब जग गर्भ गुवार तिन सच ना पाया चले नाम सार तामन तत्या बल्दी अंदर तेल दुबदा कत्या।

भगत छोड है अंध गुरु जिन केरा मासो निमे मासो जमे हम मासे के पांडे ज्ञान त्यान का सूझ नाही चतर कहावे पांडे मास पुराणी मासक तेबी चो जुग मास कमाणा जर काज व्याय सुहावे उथे मास सुमाणा इस्त्री पुरख निबजे मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसते नरक जांदे ता उनका दान न लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे

तेरा अंत न किन ही पाया। सच्चा शब्द विचार ते तुझ ही माए समाया। एक भगवा वेश कर भरम दे बिन सतगुर किने न पाया। देश दिसंतर पवथके तोद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया। अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया। आवा गौण बचारिया बाजार जिनी रचाया। एक थिर सच्चा सालहाना जिन मन सच्चा पाया। श्लोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल विस। सब कारण करता करे।

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न हुए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

गढ़ वेड़ी, गुर के शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ। मिथ्या परम परम भो भ्रम्या, लो दो पुत्र कलत्तर मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुष छाया, फिर मैं बिनस जाए दे पीत। हमरे प्राण प्रीतम जन ऊतम, जिन मिलया मन होए प्रतीत। परते राम रविया कट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर घर जाए मिले हर प्रीत। हम वो पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर घर नाम दियो मुख औहद, जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मान, राम नाम जगन्नाथ। घूमन केर परे बिख बिखया, सतगुर काट लिगे दे हाथ रखाओ। स्वामी अपय निरंजन नर हर, तुम राख लियो अंपा पीपाथ। काम क्रोध बिखया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड़ पुरख वड़ अगम अगोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू परय परय परम पर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए, सत संगत मिल साधु पाथ। हर घर कथा सुनी मिल संगत, हर घर जप्यो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभु जगदीश गुसाई, हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभु करो कृपा रखो जन साथ। कानड़ा मोहल्ला चौथा पड़ताल कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन जापो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल। हर गुरमुख कर टकसाल, हर हो कृपाल रहाओ। तुमरे गुण अग

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाव, कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर दुआ।

सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना। सबर होते दुर्लभ देही, जाको सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पर।

आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नान पूर्ण होवे आस तानड़ा मनला पनवा साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृता रस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा महला पंजवा साजना संत आओ मेरे रहाओ आनदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो माथ है चांदना गृह हुए अंधेर है संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद भजो पेख नेर है प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर है कानड़ा महला पंजवा चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम रख लीजे काट बेरी रखाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोड़ जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दिरड़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोड़ जावता सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ मुए अनाथ दाह जन तेरा अबर ओट सगली मुए त्यागी भोर परम काटे प्रसिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाहो अद बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रापागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ तू समरथ सरण योग तू राखे अपनी कल तार जाप ताप नेम सुसंजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते काड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

हट निग्रह अतरैत बिटंगा हों रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जरा पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यो मोस्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए कानड़ा मोहल्ला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ कनक मंदर पाट सेज सखी मोहे नाहे इनस्यो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात

ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे।

गुरु है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रखाओ चलतो चले चले दह दह दिस।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आज सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मन्या जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया थुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर घर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया

हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी घर प्रव जाने और कोई निंद करे घर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान हर सेवा ते कालज होए ना सके चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ता को सुमत दे पैकाने ता को कोई अपर ना सके जा की भगत मेरा प्रमाने हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ता ते जन कौ अंध पया है रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समरथ स्वामी एक मांगो तु पासो हरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हों तुमरी करो नित्यास प्रभु मुझे कब गल लावेंगे रखाओ हम बारक मुग्ध एयान पिता समझावेंगे सोत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मैं दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावेंगे जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे हर आपे हुए कृपाल आप लिवलावेंगे।

रसन नाम जपत ते पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुत सुरत शब्द तत् बेते जब तब अखंडली ओत पोत मिल जोत नान कशु दुख ना डंडली कल्याण मोहल्ला पंजवा कौन वे ताकी कहां करो धरत ध्यान ज्ञान सहस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रखाओ बेसन महेश सिद्ध इंद्रा कैदर सरन परो काहू पे राज काहू पे सुरगा कोड मध्य मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाईए साधु चरण गहो कल्याण महल्ला पंजवा प्राण पद दयाल पुरख प्राप्त सके गर्भ जोन कल काल जाल दुख बिनासन हर रखे रखाओ नाम तारी सरन तेरी प्रभु दयाल टेक मेरी अनाद दीन आसवंत नाम स्वामी मने मंत तुझ बिना प्रभु किशु न जानु सर्व जुग में तुम पछानु हर मन बसे निसबासरो गोविंद नानक आसरो कल्याण मोहल्ला पंजवा मन तन जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न भए सदा सू कल्याण रखाओ सर्व कार्य सिद्ध भए गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुकाल कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरा अंतरजामी जान कर कृपा पूर्ण परमेसर निचल सच शब्द निशान रखाओ हर बिन आना कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्व कटा के दाते स्वामी देसो पैरन खान सुरत मत चितराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक।

रामो राम रवीजै, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजै। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोध पली सिवनी की, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग पुन

जाके कर्म नाही तर्म नाही नाही सुच माला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंत नाही सदगुरु फुरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दो सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाय जोग।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होएबा अवरण करना जाए रहाओ। जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगा

ऐसे चूट मुठे संसार, निंदक निंदे मुझे प्यारा, हरहाओ जे निंदे सोई बिद जाने, गुर के शब्दे दर निशाने, कारण नाम अंतरगत जाने, जिसनु नदर करे सोई बिद जाने, मैं मैलो उजल सस होए, ऊतम आख न ऊंचा होए, मानमुख खूल महाभिख खाए, गुरमुख होए सोरा चे नाए, अंधो बोलो मुग्ध गुवार, हीनो नीच बुरो बुरियार, नी तन को तन नाम प्यार, यो तन सार, होर बिखिया शार, उस्त निंदा शब्द विचार, जो देवे तिस को जयकार, तू बगसे जात पद होए, नानक कहे कहावे सोए, प्रभाती महला पहला, खाया मैल बधाया, पैदे कर की खान, बक बगवा चलाया, बिन नावे विख जान, बाबा ऐसा विखम जाल मनवासया, बेबल त्याग सहज प्रगासया रखाओ, बिख खाना बिख बोलना, बिख की कार कमाए, जमदर बदे मारी है, छूट सचे नाए, जब आया तिव जाए सी, किया लिख ले जाए, मनमुख मूल गवाया, दरगह मिले सजाए, जग खोटो सच निर्मलो, गुर शब्दी विचार, ते नर विर ले जानी है, जे अंतर ज्ञान मुरार, अजर जरे निजर चरे, अमर आनंद स्वरूप, नानक जल कौ मीन सह, ते भावे राखो प्रीत, प्रभाती महला पहला, गीत नाद हरक चतराई, रैस रंग फुरमाए सकाई, पैन खाना चीत न पाई, साच सहज सुख नाम साई, क्या जाना क्या करे करावे, ना बिना तन किशना सुखावे रखाओ, जोग विनोद स्वाद आनंदा, मत सद पाए भगत गोविंदा, कीर्त कर्म कार निसंदा, अंतर रवतो राज रवंदा, प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम उरतारी, दीना नाद पियो बनवारी, आनंद नाम दान व्रतकारी।

प्रीतम मनमोहन आत्रसलार सगूड़ और गाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवनहारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई पसरी किरण रस कमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई प्रभाती महला पहला बारे मह रावल खब जाव है चौशे मह सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूते।

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घट घट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विज कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरण आई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

करे तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त तब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वडे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाए।

ताकत कौ दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल खेन पाल हर प्राबर दे ना वस्यो रिन बंदे बोविद बाल सत संगत मेल मत बुध पाई हां छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख भौजल डुबदे काढ़ लिहो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती मोहल्ला चौथा एक खेन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रसकर सीख गावत सुनत दो पै मुक्ते जिन्ना गुरमुख खेन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रस टीक गुरमुख नाम सीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस टीक रखाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर दिन शोभा सब जग ऊपर ज्यों विच पुड़वा सस कीक जिन हर हृदय नाम न वस्यो।

आड़ जेवरी जन लिए छड़ाई रहाओ जोज न राता प्रभ के रंग तिन सुख पाया प्रभ के संग जे न रस आया सो ही जाने पेख पेख मन में हैरान सो सुखिया

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा। सिमरत नाम किलभ सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसह, अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ, जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम स्यो लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेस, जो तिस भावे सो फल होस, ते गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई, ऐसा गुर पाईगे वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कठा के अंतर जामी, आठ पैर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभु की शरण आए।

त्याग, जो गुर कहे सोई फल मीठा, मन की मत त्याग रखाओ, मन तन वस्या हर प्रसोई, कल कलेश किस बिघन न होई, सदा सदा प्रभु जी के संग।

भगत हर सो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रगुणित गाई है, कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, चेतनवंत सेई सच साहा, हर की दरगहे नाम साहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपूरा पाई गे वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत रखाओ, पाया लाभ वजी वाधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई, सफल जन्म जीवन प्रवान, गुर प्रसादी हर अंगमान, बिनसे काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतर है पार। प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला, गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब ताक।

बसे गुरचरना, निरपय साद परेहर सरना, आनंद सहज रस सूख कनेरे, दुश्मन दुख न आवे नेरे, गुर पूरे अपने कर राखे, हर नाम जपत केलबग सब लाथे, संत साजन सिख पय सुहेले,

प्यारी, माया ममता है बोरंगी, बिन नावे को साथ ना संगी, जो मन देख है पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुर भेटे सो जी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सच शोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई, इस

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

क्रोध सो ठाट ना बनिया, गुर उपदेश मुहे कानी सुनिया। जय देखो ऐ मां चंडाल, राख लीगे अपने गुर गोपाल। दस नारी मैं करी दुहागन, गुर कहया हे रसे बखागन। एन सरबंधी प्रसाद तल जाए, हम गुर राखे घर ले बिलाए। अंग मेव से मसलत छोड़ी, गुर कहया यो मूर्ख होड़ी। यो नी घर कर कही न पाए, हम गुर राख लीगे ले बिलाए। एन लोगन से हम पै बैराई, एक गृह मैं दुए ना खटाई। आए प्रपे अंचल लाग, करो तपावस प्रभ सबाग। प्रभ हस बोले किए।

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नहाए कह सब उतरे बौर कमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंघर बांध बजा।

आई, मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव, माने हाट माने पाठ माने है पासारी, माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी, गुर के शब्द इहो मन राता, दुबदा सह सुमाणी, सब हुक्म हुक्म है आपे, निरपो समत बिचारी, जो जन जान पदे पुरखोत्तम, ताची अवगत बाणी, नामा कहे जग जी मन पाया, हृदय अलख बिडाणी, प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग, ताका अंत न जानिया, सर्व निरंतर राम रविया राव, ऐसा रूप बखानिया, गोविंद गाजे शब्द बाजे, आनंद रूपी मेरो रामैया, रहाओ बावन भीखू बाने भीखे, पालते सुख लागला।

प्रसाद राग जय जावंती मोहल्ला नामा राम सिमर ए है तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है हरहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिरस जय है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जाद आज है जय जावंती मोहल्ला नामा आराम भज जन्म।

सत्संग कल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी।

दुर्लभं तरंग रूपं नच दुर्लभं दुर्गराजन है नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वश अंबर है नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बनता विलास है नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचल है दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तते दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेपना लिप्यते विखया भयंत अमृतं दुष्टा सखा सुवजन दुखं भयंत सुखयं।

ज्ञानं हम दुख सुखं युगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं।

कंद मूलं बसंते समीप कह रहे तत्रगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं छिद्रं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं।

नरक विश्राम भोजोन्नी परमामण चेत हरण त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है संत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ पागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंज तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखयंग हृदय पूम वायरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयंग सत हदंग परम बादंग अवर तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल न पजंत तरण समान तिग जन्मन हे पीर का ग्रस्ते गोविंद सिमरण तोयंग तने नानक अनकबार नमो नम तिरणंग मेरंग सैकंगता हरियंग बूढ़ंगता तरियंग ऊणंगता परियंग अंधकार कोल सूर उजारंग बिनवंत नानक हर गुरदयारंग ब्राह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्म रतंग संसार गहंग ते नर नानक नेफल पर दर्द हेरणंग बो विघ्न करणंग उच्चरणंग सर्वजीत है लौ लई तृष्णा अत्यप्त मन माय कर्म कर्त सूकर है मते समेव चरणंग उदरणंग पय दुत्तर है अनेक पातक हरणंग नानक सा

रे बपड़ा जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रब रहे अवर तजे सब काम, कबीर परदेसी के घागर।

मत घर पूछे कौन है, परा हमारे बार, कबीर नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस घर किया, भयो कबीर कबीर, कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै।

निदान साहब जब पूछे तरमराए, कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटुंब। धंधा करता रह गया भाई रहा ना बंद, कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगा मन जाए। सरपन हो के अवतर जाए अपने खाए, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार। गदही हो के अवतर पार सहे मन चार, कबीर चतराई अत करी हर जब हिरदे माहे। सूरी ऊपर खेलना गिरे ता ठाहर नाहे, कबीर सोई मुख तन है जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम, कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास। जे कुल दास ना उपजे तो कुल ढाक पलास, कबीर है गे बहन सगन कान लाग तजा फहराहे। या सुगते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाहे, कबीर सब जगहों फिरे।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुण।

कन खर्षाया वर्ख परे सरताल चात्र विजो तरस पर है तिनको कौन हवाल कबीर चक्की जौनस बिचर।

कस्तूरी भया पवर पए सबदास। ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गहगज परयो कुटुंब

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोधक हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोटक मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

चोर सहारे शब्द की, ताश गुरु मैं दास, कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होवे, जा कारण तू बांग देहे, दिल की पीतर जोए, शेख सबूरी बहारा के हज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई

कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई होए गई पाठ शार। कबीर निर्मल

निरंजन नाल। महला पंजवां। कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके नाहे। जिन इउ रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। कबीर कीचड़े आटा गिर परया,

का सफल फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ती गोष्टे जो कीने सो लाभ कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबर खेलो पीसो इसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी

ਭਗਤਨ ਡੰਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ, ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਦ ਮਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਜ ਕਿਰਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੋਤਾਰੀ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖ ਹਰ ਬੰਧਪ, ਜੀ ਧਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ। ਓੜ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਆਪਦ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ। ਦਾਵਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ। ਪਾਪ ਕਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਰਿਓ ਜਨ ਤੂਰ ਲੱਗ। ਨੀਰ ਨ ਸਾਕਸ ਬੋਰ, ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗ। ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗਮੋਹ, ਛਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ। ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬੋ ਭਾਤੀ, ਵਿਚਰੇ ਅਨਕ ਸਾਤਰ ਬੋ ਖਟੂਆ। ਪਸਮ ਲਗਾ ਤੀਰਥ ਬੋ ਪ੍ਰਮਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋ ਜਟੂਆ। ਬੇਨ ਘਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ। ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਫਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ। ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤ। ਤਾਜ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ, ਆਤਮ ਰਜਨ ਜਾਣਿਓ। ਤਬ ਕਲਸ ਜਦ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗਾਵੇ ਜਿਨ ਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸਰ, ਹਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ। ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਧਕ, ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਸ਼ਲ ਸ਼ਲਾ। ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੋਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਕਾਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ। ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸਰ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ। ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ। ਤਬ ਕਲਸ ਜਦ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਵਰਨ ਚਾਰ ਖੜ ਦਰਸਨ, ਬ੍ਰਹਿ ਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ। ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਿਜੇਬਾ ਰਸ, ਆਦ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗ ਤੁਨਾ। ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਂ ਦਿਓ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ। ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਮਾਣਿਓ, ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਹਿਰਦੰਤਰ। ਸਿੱਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ, ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਦ, ਆਸ ਜਿਨ ਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲੱਗ। ਧਨ ਤਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਪਲੋ ਜਗ। ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈ ਕਾਰ ਧੁਨ, ਅਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ। ਸਾਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ, ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ, ਅਪਹਿ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ। ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਚਲ ਅਟਲ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ। ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ। ਭਗਤ ਬੇਣ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸੁਖ ਦਿਓ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਾਇਆਲ, ਭਗਤ ਨਾ ਗਾਦ ਪੋਹ ਅੰਗਮ। ਮਹਾਂ ਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਬਿਆਸ, ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿੱਟ ਸਵਾਰੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ। ਜਬ ਕਲਸ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो मां धाता गुण रवे जेन चक्कर वै कहायो गुण गावे बलराव शब्द पाताल बसंतो परथर गुण उच्चर सदा गुर संग रहंतो दूरबा पुरूरो अंगर गुर नानक जस गायो काब काल सुजस नानक गोर काड़ काड़ सहज समायो सवाईगे महल्ले दूजे के एक ओंकार सदगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थो सदगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो ता तरयो मस्तक हथ सहज आम्यों उठो छज सुर नर गान मुन बोझ अगाज मारो कंटक काल गर्ज तावत लियो बर्ज पंच पूत एक कार राख ले समाज जगजीतो गुरुद्वार खेले संत सार राख उन मन लेव राख निरंकार कौ कीर्त कल सहार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्तर गोर परस मुरार जाकी दिष्ट अमृत धार काल खन उतार तेमर अज्ञान जागे दर्श द्वार ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिकमकार ते नर पाव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर बीचार निमरी पूस दीव परम प्यार कौ कीर्त कलस हार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्तर गोर परस मुरार तय तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बथार साधक सिद्ध सो जान जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत्र जाल पद्म विचार कल्प तार रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मा तृप्त तेरे एकले अवतार कौ कीर्त कलस हार सप्त दीप मजार लैणा जगत्र गोर परस मुरार तय ता हदरत पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हरगर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकलगत गुर परवान या की दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सुथान पैर सील सुनाहो सगत बिदार कौ कीर्त कलस हार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गुर परस मुरार दृढ़ तरत तम हरन दैन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बेनासन लो मुवस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कैन अमृत कल ठालन सदगुरु कल सदगुर तिलक सत लागे सो पैतर गुर जगत फिरन सी अंगरो राज योग लैणा करे सदा आकल लिवर है कर्ण सु इच्छा चार है द्रम सपूर जोने वे खवे कस बिमन बीचार है ए तत जान्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतोख ग्रहज लयो हर परस्यो कल सुमुलवे जन दर्शन लैने पयो मन विश्वास पायो गैर गो हदरथ दियो गल ना तन नठ्यो अम्यो अंतरगत पियो रिद बगास जाग्यो अलख कल तरी जुगंतर सदगुर सहज समाध रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दार्द हरण पेखंते कलमल त्रसन सद रंग सहज कल उच्चर जय जंपो लहने रसन नाम अवखद नाम आधार आर नाम समाध सोख सदा नाम निशान सोख रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरे बोह नाम परजन पायो सब प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे है गुरु के आड़सड़ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोह सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोह जिस सच संजम वर्त सच कबजन कल वखाण दर्शन परसे है गुरु के सच जन्म परवान अमेदृत शुभ करे हरे अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोभ मोह
वस करे सबे बाल सदा सुख मन वस है दुख संसार है खोवे गोर नाम नदरी आओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेवी है अहे निस सहे सुपाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए सवैये महले तीजे के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तोई पुरख सेवर सच जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाधरा सिमरे नखेतर अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद बरा ससियर सूर नाम उलस है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन का समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर केल बखरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुरमन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमर तरसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम केत संसार किरण सुर तरसख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जस पख है जमत उसके अथ जित नाम हरदे निवास है सुन नल गण गंधर्व छे दर्शन असस पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो तोई नाम भगत फौजल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम त्यावे देव ते तीस हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे ते नाम समाध्यो हरक शोक सम कर सगारे नाम श्रोमण सर्वमय भगत रहे लिवतार तोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना ये तीर जो तुर तवल तुजा छेद बैकुंठ बीना परसे संत प्यार ये करतारे संयोग सगुरु सेव सुभ पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर पूजन नाम रस सदा चाहे मुखमिष्ट बाणी तन सदगुर सेवयो जिस पसाए गद अगम जानी कोल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चर गुर परस्यो अमर प्रगास बाज कर दायण सिद्ध सनमुख मुख जो वै हृद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे अकहियो होरा तिनही जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सदगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण त परस के अथ चरण गुर अमर पवल रह हाथा परस के अथ हथ लगे गुर अमर पै जीता परस के अथ जी गुर अमर पणिजे नैन ता परस के अथ नैन गुर अमर पिखिजे श्रवण ता परस के अथ श्रवण गुर अमर सुनिजे सक्यत सो हियो जित ही बसे गुर अमरदास ने जगत पेत सक्यत सो सिर जालब पणे जो सिर नवे गुर अमर नित तेरार दुख ने भुख तेरार ने तनो कहिए तेरार सुख न हुए तेरार से अंत न लइए तेरार सेव न करे तेरार से सह सुमपे तेरार दुलीचे बहे तेरार उथप बिथप सुख लहे तेरार संसार में।

भगत कंबीर जानी रुक मांगत करतूत आराम जपो नर पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गद पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास परसी है पोम पातक बिनास है गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आसास है गुर अमरदास परसी है ध्यान लई है पौ मुक है गुर अमरदास परसी है अपाओ लभे गौ चुक है एक बिन दुगण जो तो रहे जास मंत्र मान मैल है जाल पा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले सच नाम करतार तो दृढ़ नानक संग्रहयो ताते अंगद लैना प्रगट ता चरणे लिव रहयो तित गुर गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमन वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो वेथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदाहरण गुर अमरदास कीर्त कहे त्रागे त्रागे तो पासरण आप नारायण कला तार जग में परवरयो निरंकार आकार जो जग मंडल करयो जय कहते परपूर शब्द दीपक दीपायो जे सिखे संग्रहयो तत घर चरण में

पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल भाण तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन उब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निद अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग मान नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चर ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजय

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाय अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

ही बन आवे। सतगुर नाम एक लिमन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरण खिन मात्र जाको दृष्ट धारै।

कि सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी फिर थप्यो हर का नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जप करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार आगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की वृथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रया पूर बोविद वर्णंग सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जाग रचा कुंडलनी सुरजी सा संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंतकार खेर पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सके ईस बम ज्ञान ध्यान हरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नाग सहरयो नख बदार जियो संख चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीर बसन पुंद दसन प्रिया सहित कंठ मार मुकट शीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਂ ਕੁਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਰ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਪੁਰਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ

आर उजागर आन कियो, तिनके दुख कोट के दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए पद ते मद चूके रे मन, भेद भेद न जान पियो, पर तछर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं पागल लार उदय।

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भजन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मैं जो स्वरूपी रहो पार पान मसरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण ना चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सदगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नजर न आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई सदगुर सेवे सो सुख पाए नव से मन आई नांग से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द न करे प्रगास ओ न अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा ओ सब बलगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखवाए बेका मारण हर नाम है गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है निध हिरदे घर लिवलाए निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल निद पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताव तरह गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुद्धि है सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद तद गुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार एथे उथे मनियन हर नाम लगे वापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जमकाल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह सुमाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन तो सद कुरबाने जाओ लग चौरासी मेदनी इसना जलती करे पुकार यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ, ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ, ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ

पाए मन मुगसे ती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभियां जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतरै जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मेटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रुल मोए।

हरमंदर वस्त अनेक है नाम निद नाम समाल तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल वड भागी गढ़ मंदर खोजया

जे अन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एओ मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना, नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख

नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले एक सच्चे दरबार तिन बहिंदिया उड़दिया कद

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थग पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

तिथे भगत वसै के लो कर आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड।

तीर जसुन यार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नदर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तू आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तन अंतर हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुवै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नारक नाम आधार टेक है हर नाम

संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सुरै नारे, मन गुरमल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रसो अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई बिहा जहो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग श्री राग महला पहला, कर पहला। मोती ता मंदर उस रह, रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चित ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया, अवर नाही थाओ रहाओ। धरती ता

समुठी हंकार राओ जिनी नाम विसारिया दूजी कर लग दुबदा लागे पच मोए अंतर तृष्णा अग गुर राखे से उबरे होर मुठी तंदै ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध कर्म लै सच पाई है।

बिन गुण कामना आवई टै टेरी तनखे है मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिदमानक मोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन धारन लगई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मै मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगत ना

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटेओ सो भौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल भौजल लंघीऐ दरगै पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास

नितरोए खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पाता है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह आराम नाम रंग रतिया पार ना पर मऊ तिनाह हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार रंग मान लै प्यारिया जां जोबन।

जे तू साहिब आवै रोहे तू ओना का तेरे ओहे। असी बोल विगाड़ विगाड़ै बोल तू नदरी अंदर तोलै तोल। जै करनी तै पूरी मत करनी बाजो कटे कट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणै बुझै सोए। गुर प्रसाद करे भी

मैं मछली कैसे अंतलहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी सो

इस लोभी का जियो टल पलै बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ। पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इओ जलै कर चानण साहिब तौ मिलै रहाओ। इत तन लागै बाणिया सुख होवै सेवक माणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए। सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनों दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए। नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए। मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ। जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान। हृदय कमल परगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन आप

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगार सुख वसै, ज्योतिष पावै सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाने, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनजन दुख विहानी, मनमुख अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा या तो सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए, जात सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंत न आवई, नित नित होए खुवार, पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सुहागण।

पूरे पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिनको नजर करे खसम पछाणै अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हो मैं दूर करे नानक सो बावंतियां सोहागनी अनजन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावै अपना हो कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देव मिलाए सब पाए आपे वेखै किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावे पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभु प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहारे जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सबके तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जियो बख्से बख्स लय सुख सदा शरीर गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमती नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तासमान जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारन हार मन के बेकार मने तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाई मन मुख फिरै दीवान शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे बिख्या माहे समान सब कछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यो बुलाए त्यों बोलिया जाय आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द में लावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए श्री राग महला तीजा जग हौ मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हौ मैं धोती किवे न उतरे जे सौ तीर्थ नाए बहुविद कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पढ़िया मैल न उतरे पुछो ज्ञानिया जाए मन मेरे गुरसरण आवे ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी धोए रहाओ मन मैले भगत न होवई नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन वसै मलहों मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए। श्री राग महला पंजवां। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखनहार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसर जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थनंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री